0: bad about not. Facebook रोज़ जो है ना अगर वे सुमित को काम ना करते तो आगे चलते
1: बोला नहीं सुनता रहा तो सरकार का कोई ना ये भी सारे सामने
2: Stop now.